टीला जरूर हुआ, किंतु जातिवाद की प्रवृत्ति अधिक प्रबल होकर उभरी है, जिसका राजनीतिक एवं वर्चस्व से गहरा संबंध है। वामपंथी विचारधारा से संबंध रखने वाले कथाकार नागार्जुन ने स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी के योगदान को स्वीकार करते हुए लिखा है कि आजादी के लिए जो समझदारी पहले थोड़े से पढ़े लिखे लोगों तक सीमित थी, उसे गांधी जी आम पब्लिक तक ले आए, यही उनकी सबसे बड़ी खूबी मैं मानता हूँ। इस स्वीकारोक्ति के बावजूद नागार्जुन गांधी जी की व्यक्तिवादिता से सहमत नहीं थे। वे जिस राजनीतिक व्यवस्था के पक्षधर थे, उसमें जनता ही वास्तविक निर्णायक शक्ति हो सकती थी। उन्होंने आर्थिक विषमता को सामाजिक समस्याओं का प्रमुख कारण बताया है। उनकी समूची कथा संरचना में आर्थिक अभाव, सामाजिक भेदभाव और शोषण प्रक्रिया को उभारने पर विशेष बल दिया गया है। नागार्जुन ने अपने उपन्यासों में जन विरोधी शक्तियों के कुटिल तन को छिन्न भिन्न करने के लिए श्रमिकों, युवाओं, छोटे किसानों एवं दलितों को राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन का वाहक बनने की प्रेरणा दी है। दधिनाथ की चाची और बिलचनमा जैसी महत्वपूर्ण औपन्यासिक कृतियों में नागार्जुन ने आर्थिक समस्या को केंद्रीय महत्व दिया है। दधिनाथ की चाची का कथानक मैथिल ब्राह्मण समाज पर केंद्रित है, जिसमें खाते पीते और विभिन्न दोनों तरह के चरित्र है। यहाँ आर्थिक एवं सामाजिक सत्ता का द्वंद्व अवश्य है, किंतु आर्थिक सत्ता सामाजिक सत्ता पर भारी पड़ती दिखाई देती है। ये वस्तु विन्यास मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप है, जिसमें भारतीय समाज की वर्ण जाति आधारित संरचना को भी वर्ग विभाजित समाज के रूप में देखने का आग्रह मिलता है। इस उपन्यास की स्त्री पात्र गौरी की दरिद्रता का संबंध जिस सामाजिक व्यवस्था से है, उसमें पौराहित्य कर्म को विशेष महत्व दिया गया है। पुरोहितवाद का संबंध आर्थिक व्यवस्था से भी है। परिस्थितियों के साथ पौराहित्य कर्म की आवश्यकता एवं अनिवार्यता में क्रमशः परिवर्तन तो आया, किंतु समाज में उसकी सुदृढ़ परंपरा को कोई भी प्रणाली प्रतिस्थापित नहीं कर सकी। हालांकि जो लोग इस कर्म से विरत होकर दूसरे क्षेत्रों में चले गए, वे प्रगति के मार्ग में बहुत आगे बढ़ गए। नागार्जुन ने बदलते समय में परंपरागत कुलीनता के प्रति उपेक्षित दृष्टि का परिचय दिया है। अब जमाना बहुत बदल गया है। कुलीनता ही काफी नहीं थी। उमानाथ दरिद्र था, उसके बाप और दादा भी दरिद्र थे। उसकी शादी की बात इतनी झटपट जो तय हुई, उसका श्रेय ट्रम्प कंपनी की नौकरी को था। ये आर्थिक सत्ता का ही बल था कि जिसके पास जितना धन था, उन्होंने न केवल एकाधिक विवाह किया, बल्कि स्त्रियों को पशुओं की तरह खरीद कर घर में बांध लिया। नागार्जुन ने इसका समाधान गौरी को चरखा काट कर खर्च चलाते हुए किया है। अपने समय और समाज की जकड़न के बीच गौरी यदि अपना स्वतंत्र अस्तित्व निर्मित कर सके, तो इसमें उसके स्वावलंबन की भूमिका महत्वपूर्ण दिखाई देती है। बेलचनमा की आर्थिक समस्या इससे अलग तरह की है। उसमें दो वर्ग आमने सामने खड़े प्रतीत होते हैं। बेलचनमा में खुले आम वर्ग संघर्ष को ही समता, समानता, न्याय आदि मूल्यों की स्थापना का साधन माना गया है। ये बदली हुई राजनीति निश्चय ही अहिंसक संघर्ष से आगे बढ़ी हुई है और बदले हुए संदर्भों में सार्थक है। बेलचनमा ने अन्याय और शोषण को सहा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध भी किया, किंतु स्थितियां जस की तस बनी रही। ऐसे में उसे संगठित प्रतिरोध ही एकमात्र विकल्प के रूप में दिखाई पड़ा। शोषण एवं अन्याय के विरुद्ध संगठित होना कोई आसान काम नहीं होता, फिर भी समाज में प्रतिरोध की चेतना निरंतर सक्रिय रहती है, कभी मंद मंद तो कभी उग्र होकर। वरुण के बेटे के केंद्र में भी आर्थिक समस्या ही है। यहाँ मछुआरों और भूस्वामियों के माध्यम से नागार्जुन ने आर्थिक विषमता के यथार्थ को विन्यस्त किया है। उन्होंने इस सच्चाई को भी उद्घाटित करने का प्रयास किया है कि श्रमजीवी वर्ग में जाति के धरातल पर इतने विभाजन है कि उनका एकजुट हो पाना संभव नहीं हो पाता। जाति की भावना इनकी एकजुटा में बांधा बनकर उपस्थित हो जाती है, जबकि उच्च वर्ग अपने आर्थिक हितों के परस्पर टकराहट के बावजूद शोषण की विचारधारा एवं उसके अनुप्रयोग की शैली को लेकर सहमति बनाने में सफल हो जाता है। नागार्जुन ने शोषित उत्पीड़ित जनता को संगठित होने के लिए वैचारिक आधार को जरूरी बताया है। बिना किसी स्वस्थ एवं जनमुखापेक्षी वैचारिक आधार

0: हर के संगठन लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता और संगठन के अभाव में उपेक्षित जनों के संघर्ष का तार्किक परिणति तक पहुंचना संभव नहीं है। वरुण के बेटे में उपन्यासकार ने दिखाया है कि मछुआरे जेल जाने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, किंतु अपने अधिकार के लिए संघर्ष से पीछे हटना उन्हें स्वीकार नहीं होता। नागार्जुन की औपन्यासिक दृष्टि में आर्थिक समस्याओं के समाधान का यही मार्ग अंतिम एवं सार्थक रूप में निर्दिष्ट हुआ है। उनके अन्य उपन्यास बाबा बेडेसर नाथ में भी आर्थिक समस्या के समाधान का यही मार्ग चुना गया है। कहना अन्य होगा कि शोषक वर्ग और परिवर्तनकामी शक्तियों के बीच संघर्ष में नागार्जुन पूरी तरह से संघर्षशील परिवर्तनकामी शक्तियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। इस उपन्यास में ऐसा लगता है मानो नागार्जुन स्वयं बाबा बेडेसर नाथ के रूप में उपस्थित है। बाबा बेडेसर नाथ की कथा किसी व्यक्ति की नहीं, समूचे शोषित पीड़ित लोगों की है। कम्युनिस्ट प्रभावित गांव की है जो देश की आजादी के पहले शोषक अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा था और आजादी के बाद भी देशी शोषकों, अत्याचारियों, जमींदारों, पूंजीपतियों, भ्रष्ट सरकारी अफसरों और जनसेवा के बहाने अपना स्वार्थ साधने वाले शासक पार्टी के नेताओं के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ रहा है। लेखक का स्पष्ट मत है कि आजादी के बाद भी देश में शोषण उत्पीड़न का चक्र रुका नहीं है। शासक का चेहरा ही बदला है, शासन का पद्धति नहीं बदली है। नागार्जुन व्यक्तित्व संबंधी को आर्थिक विषमता का मूल कारण मानते हैं। उनका मानना है कि वर्गीय शोषण से मुक्ति और आर्थिक समानता के लिए सामूहिक अधिकार वाली व्यवस्था जरूरी है और ऐसी व्यवस्था का निर्माण केवल मार्क्सवादी विचार प्रणाली के अंतर्गत ही हो सकता है। धर्म को संस्कृति का अविभाज्य अंग बिना देने से जो रूढ़ियां निर्मित हो गई थी, रीतिनाथ की चाची उपन्यास की गौरी उनका सहज ग्रास बन जाती है। वैधव्य की समूची यातना उसके जीवन में उतर आती है क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में विधवा विवाह को अधर्म समझा जाता है। नागार्जुन ऐसे धर्म के विरुद्ध खड़े है जो मनुष्य को उसकी गरिमा से पतित करता है और लिंग एवं जाति के आधार पर भेदभाव करता है। धर्म के आधार पर जनसाधारण को ठकने वाले पाखंडियों का नागार्जुन वैचारिक स्तर पर प्रतिवाद करते हैं। नागार्जुन के संपूर्ण साहित्य में अपने समय और समाज के भारतीय मनुष्य के अनेक प्रकार के उलझाव और संघर्षों को समझाने व सामने लाने की कोशिश की गई है। इस उलझाव का एक क्षेत्र धर्म भी है। उन्होंने भारतीय समाज में धर्म के अनेक प्रकार के प्रभावों और उनसे उपजे द्वंद्वों का चित्रण किया है। नागार्जुन के उपन्यासों में धर्म को लेकर कोई व्यवस्थित विमर्श नहीं रचना गया है। उनकी विचार यात्रा बौद्ध धर्म से मार्क्सवाद में संक्रमित हुई थी, तथापि उन्होंने धर्म के नैतिक पक्ष को अवश्य महत्व प्रदान किया है। यह मात्र संयोग नहीं है कि संस्थागत धर्म में आस्था प्रदर्शित करने वाले उनके पात्र शोषण वर्ग के साथ खड़े दिखाई देते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि नागार्जुन के उपन्यासों में सामाजिक विसंगतियों, विडंबनाओं एवं विद्रूपताओं को दृष्टिगत रखते हुए मानवीय मूल्यों की स्थापना की गई है। नारी शोषण, नारी विमर्श एवं नारी सशक्तिकरण को भी विवेचित करने का प्रयास किया गया है ताकि मूल्य संक्रमण की स्थिति में भी समरस समाज की स्थापना हो सके। जीवन मूल्य सामाजिक एवं आर्थिक दोनों स्तरों पर दोनों को मिले हैं। गांधी जी से प्रभावित नागार्जुन गांधीवाद को भी कुछ सीमा तक अपने उपन्यासों में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। बदलते हुए समाज में मूल्य भी स्थिर नहीं रह सकते हैं। यही कारण है कि नागार्जुन ने बदलते हुए परिवेश में मूल्यों में भी परिवर्तन को रेखांकित किया है।
1: अभी आप सौजा एसओ की वार्ता सुन रहे थे नागार्जुन के उपन्यासों में मानवीय मूल्य। इसी के साथ आज का हिंदी प्रसारण यही समाप्त होता है। नमस्कार।

0: ഇളയരാജയുടെ സംഗീതത്തിൽ എം ജി ശ്രീകുമാറും ചിത്രയും പാടിയ ഗാനമാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടത്. ചിത്രം മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച്. ഇനി അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ സമാചാർ സന്ധ്യ, തുടർന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹി റിലെ.
1: നമസ്കാർ. ആകാശവാണി സേ സമാചാർ സന്ധ്യ കേ സാത് മേ പ്രിയങ്ക അരോഡ. मुख्य समाचार. केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी. क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की. आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की. सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रूपए से बढ़ाकर 1,580 रूपए किया. खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया. पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी. और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते. अब समाचार विस्तार से. केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है. इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे. जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है. गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी. ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध

0: समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
0: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
2: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर।
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
6: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
2: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बायपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ. मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Center constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch Inter-Pacific Maritime Surveillance Collaboration, condemn terrorism in all its forms and manifestations. Government revises minimum assured procurement price of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. Sports Minister Mansukh Mandviya backs Yogasan for future Olympic Games, Ahmedabad to host first World Yogasan Championship next month. And at Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian grapplers Mohit Kumar and Chandar Mohan clinch gold medals in men's freestyle event in Vietnam. And now the news in detail. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in the Home Ministry will serve as the Member Secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said, demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty, but also to national security, law and order, profound changes in social structure, and the preservation of tribal society. A report.
3: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shifts at the levels of religious and social

0: social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Redford last year, had announced about the high-level committee on demographic change.
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
0: द कमिटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन वन ईयर। इफ नेसेसरी द टेन्योर ऑफ द कमिटी मे बी एक्सटेंडेड बाय अप टू 6 months। विद अनुपम मिश्रा, दिस इज विष्णु पीएस, आकाशवाणी न्यूज, दिल्ली।
2: Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in the process of installing anti-drone systems within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sancho border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
4: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर एरियल थ्रेट विद इन द नेक्स्ट 6 months। हाउएवर सिंस दीज ड्रोन्स इवेंचुअली लैंड ऑन इंडियन टेरिटरीज वी मस्ट रिमेन हाईली विजिलेंट अबाउट दोज हु मे यूज द मटेरियल्स कैरिड बाय देम फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज। इफेक्टिव न्यूट्रलाइजेशन विल रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन विद सिविल अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस अलॉन्ग विद प्रॉम्प्ट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन एट एवरी लेवल।
3: परिणाम लक्षित कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
2: मिस्टर शाह सेड स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दोज इन्वॉल्व्ड। ही स्ट्रेस्ड दैट सिंस ड्रोन्स लैंड इन द इंडियन टेरिटरी, क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द लोकल पुलिस एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज असेंशियल टू आइडेंटिफाई दोज रिसीविंग सच कंसाइनमेंट्स एंड टू न्यूट्रलाइज द थ्रेट्स इफेक्टिवली। Quad Nations today launched the Inter-Pacific Maritime Surveillance Collaboration aimed at strengthening the coordination in maritime surveillance. Addressing a press conference in New Delhi after the conclusion of the meeting, Additional Secretary in the Ministry of External Affairs, K. Nagaraj Naidu, said, "Foreign ministers strongly condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism." He said that in the joint statement, terrorist attack in Pahalgam was condemned. Mr. Naidu said the meeting reaffirmed Quad's commitment to a free and open Indo-Pacific.
5: The meeting reaffirmed the Quad's commitment to a free and open Indo-Pacific and emphasized that the Quad continues to evolve as a practical and an action-oriented platform, delivering tangible benefits for the region. Discussions focused around four pillars of Quad cooperation. The first pillar is maritime and transnational security. Two, economic prosperity and security. Three, critical and emerging technologies, and four, humanitarian assistance and disaster response.
2: The Quad Foreign Ministers Meeting joint statement said the Quad nations discussed the situation in West Asia and reaffirmed support for ongoing diplomatic efforts and hope for lasting peace in the region. They reiterated the importance of adhering to international law as reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea or UN Clause, with respect to navigational rights and freedoms and the safety and uninterrupted flow of global commerce through the Strait of Hormuz and the Red Sea. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio attended the meeting. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. Jaishankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. He said, "The Quad nations are open societies who foster innovation and creativity in the quest of growth for prosperity." He also laid emphasis on zero tolerance for terrorism.
6: As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world.
2: Dr. Jaishankar emphasized that Indo-Pacific